बीजेपी सरकार ने अमेंडमेंट करिया, तरमीम करिया, 2022 करिया, 23 चो छपी नोटिफाई होगी। उधर च लिखा है भी जे चोन कमीशन कुछ मंगना चाहे तो आधार नंबर मांग सकता है, ठीक हो गया, जेड़ा कहते दस्तावेज दिखाओ। पर जे कोई आधार नंबर ना भी दे अगे लिखता तो फिर ओदा जेड़ा ना तो नाम जे दर्ज करना ना करी जा सकती है, ना दर्ज हुआ नाम कट्टिया जा सकता है। ये कहना मैं तो आधार नंबर मनना ही नहीं आधार, फिर जे मान लिया, फिर जे नहीं दिता फिर मैं कट देना। उसे तो लिखा है भी पहली गल तू मंग कदा आधार सकता, तू भी डॉक्यूमेंट मंग ही नहीं सकता, जब तो उन्होंने एक्ट अमेंड करा लेंगे ना पहला। मैं ये कहना भी जे विधि देखो जी तुम पता की है किस गल से अपना प्रॉब्लम कितने आ रही है, एक मुंडा कुड़ी भज के रहा करा लेंगे ने, एक विधिवत मापिया की राय न करते अपनी मर्जी ही ने, पर मापिया की राय हो जाती है तो विधिवत मतलब फिर फुरे आनंद कार जो भी होंगे वो हो जाता, दोनों च बड़ा फर्क है। सो इन्हें सारा कुछ तोड़ता, जे सारा कुछ तोड़ रहा है गलती नहीं है, ये जान बुझ के करे जा रहे, गलती एक हो दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, अगली गल फिर इन्होंने की कर लिखा अपना जन प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि कानून च बी जे कोई बंदे का वोट कटना है प्रोसीजर है, चाहे वह मिले नहीं, चाहे किसी ने शिकायत करती, चाहे उन्होंने कहना यह नागरिक नहीं, चाहे कहना यह तो पागल है, चाहे कहना यह तो दिवाली है, चाहे कहना यदि उम्र ठीक नहीं है, कुछ भी है, जहां इतों का रेजिडेंट नहीं है, उन्होंने नोटिस देना है। कोई बंदा उसकी शिकायत करेगा 7 नंबर फार्म च उन्होंने रसीद दी जाएगी बाकायदा शिकायतकर्ता को, इन्हें आके शिकायत करता था जेड़ा एड्रेस और सारा कुछ पता नहीं बंद करता आप ही, तो इन्हें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जेड़ा शिकायत करता अगले ने पता तो हो कि मेरी झूठी शिकायत करी है। फिर उस 100-100 नाव कटाई जा रहे ने, जेड़ा जे किसी का नाव कटना वह तरीका है, ठीक हो गया। हुण उहदे च की है कि जे किसी की शिकायत आ गई जां भी उहनूं आपे शक पै गया, इह कोई जरूरी नहीं भी शिकायत ही आवे, वह जाके उत्थे तफतीश करेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ERO ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਪਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ BLO ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਜਰੂਰੀ ਵੀ BLO ਉਦੋਂ ਸੱਭਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਊ।